0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: sip on your extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
2: सुनकानी सिद्ध का साथ गणेश बहादुर राउत हो।

को बरसा पानी ना परना ले उमार आए मां बिगिरो जाऊ कली लोगा बा सानू मेरो बाबा उमार आए मां बिगिरो जाऊ दिनभरी खोजी लाई साथी लाई सोदी मेरो माया कतरे

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: भवानी थी ना
1: बनवाने को की ना बनवाने को की ना
0: सौरे
1: बागाले पानी जान्छु तिमलाई पानी लान्छु

0: दारा कोठे की केलाई घर चौसे के केलाई घर चौसे की छाती में समाए पछारा तो
1: Sultana,
0: I did,

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पत्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्वत 2083 साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 7 तारीख आषाढ़ 23 गते मंगलवार सप्तमी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

बस्नी म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा म दुःख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव जय गणेश जय गणेश देव गौरी माता पार्वती पिता महादेव हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है आरती का जय राधे राम जी का जय आरती का जय राधे राम जी का जय आरती गरौं प्रभु आती मातु मारे यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव गौरी माता पार्वती पितै महादेव हरि हरि सधैँ भरि भक्ति गरौं है हरि हरि हरि हरि सधैँ भरि भक्ति गरौं है श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ हो रुन्छ नि मेरो मन श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन

भिनावतार जिलुकोले बहनी म पदम प्रसाद चौरालाई वृद्धि सिद्धि गुरु गणपते साष्टाङ्ग यही गर्दछु।